0: अरे भाई ये क्या हो रहा है?
1: अरे ढोलक बज रहा भाई, ढोलक।
0: ढोला क्यों बज रहा है?
1: अरे शादी है यार, शादी।
0: शादी हम भी चले।
1: चलो।

0: कृतन अरे मथुरा के पेड़े रेवड़ी मेरठ वाली चाट गरीबा की लाएगा अरे मैं हुक्म करूं तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा
1: अरे लगवाऊं।

आपका अपना श्याम अंदर है विथ माई ब्रदर लीजो जॉर्ज नखरे कर ये तेरे तंग क्लब में लगा दी तूने आग ये दूर से ना आप मुझे तक मेरे पास

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता।
1: हाँ, लेकिन ऐसा ही तू बोल बच्चन करता रहेगा तो एड़ी से सर तक दर्द होगा।
2: Yeah, you talking not right, and body pain from toe truck to headlight.

0: जी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है और मैं कहता हूं कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं
1: होता। गड़े गड़े ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रैपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।